0: आवाज़ी ताजिक आकाशवाणी आपका स्वागत है हमारे प्रसारण में। रेडियो आवाज़ी ताजिक 4 बजे दुशम्बे नगर और 4:30 बजे भारतीय समय के अनुसार 1 घंटे के जारी प्रसारण हो जाता है। आप हमारे प्रसारण में ताजिकिस्तान के नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, इतिहास और जीवन के बारे में दिलचस्प टिप्पणियां आठ भाषाओं ताजिकी, दारी, फारसी, रूसी, उज्बेकी, हिंदी, अरबी और अंग्रेजी में सुन सकते हैं।
1: नमस्ते जी प्यारे सुनने वालों, आप रेडियो ओजी तोजिक हिंदी कांत को सीधे आकाश में सुन रहे हैं। आपके साथ है शोरा न्यूज़ोवा और हमारे प्रोड्यूसर अबू मंसूर इस्माइल।
2: ताजिकिस्तान और विश्व की महत्वपूर्ण घटनाओं पर नजर, ताज़ा और विश्वसनीय खबरें आधिकारिक सूत्र से रेडियो आवाज़ ताजिकी हिंदी विभाग से 105.5 FM में सुन सकते हैं।
1: इस घंटे की मुख्य खबरें। ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति उमाली रहमान ने संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तथा ईरान के इस्लामी गणराज्य के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान को बधाई संदेश भेजा। उप प्रधानमंत्री ने शहरिस्तान जिलों में कृषि कार्यों की प्रगति का निरीक्षण किया। दुशंबे में स्वास्थ्य और सौदार्य से संबंधित उत्पादों तथा सेवाओं की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी शुरू हो गई है और अन्य समाचार हिंदी भाग को सुन सकते हैं। ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति उमाली रहमान ने संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ईरान के इस्लामी गणराज्य के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान तथा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री महामहिम शहबाज शरीफ को बधाई संदेश भेजा, जिसमें कहा गया है, अत्यंत सम्मान और सभी भावना के साथ मैं आपको तथा संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के सम्मानित लोगों को आपसे शांति समझौते के प्राप्त पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। यह वास्तव में एक महत्वपूर्ण घटना है जो आपके दरार इच्छाशक्ति और निरंतर प्रयासों का परिणाम है। ये मध्य पूर्व क्षेत्र में व्यापार, शांति और स्थिरता स्थापित करने तथा विश्व का सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और शांति स्थापना के नए पहल के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करेंगे। ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति राष्ट्र का नेता उमाली रहमान ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री महामहिम शहबाज शरीफ को इस शांति समझौते तक पहुंचने में उनके प्रभावी मध्यस्थी की भूमिका के लिए हृदिक बधाई दी। उन्होंने कहा कि हम इस संवेदनशील मुद्दे के समाधान में आपके निरंतर प्रयासों और दरार इच्छाशक्ति को अत्यंत इच्छा महत्व देते हैं। इस समझौते के परिणाम निस्संदेह क्षेत्र और विश्व स्तर पर स्थायी शांति, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था की मजबूती तथा आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए महत्वपूर्ण आधार प्रदान करेंगे। ताजिकिस्तान एक शांति प्रिय देश के रूप में जो सभी प्रकार के संघर्षों और विद्वानों के मदम समाधान का समर्थन है, वर्तो और कूटनीतिक संवाद के माध्यम से इस महत्वपूर्ण कूटनीतिक उपलब्धि का ईमानदारी से स्वागत करता है। ताजिकिस्तान के प्रधानमंत्री सुलेमान जोजोदा ने शहरिस्तान जिलों में कृषि कार्यों और आलू की फसल के स्थिति का निरीक्षण किया। इस दौरान बताया गया कि आलू उत्पादों का विकास देश के खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। किसानों को भूमि के प्रभावी उपयोग, कृषि कार्यों में सुधार और उत्पादकता बढ़ाने के लिए आवश्यक सुझाव दिए गए। खुजंद शहर में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश प्रदर्शनी सोख 2024 शुरू होने जा रही है, जो 20 जून तक जारी रहेंगे। ایسا یوجن کا دیشا ویا پار کو برہوا دینا نیوے شرکشت کرنا نریات کشمتا برہنا اور دونے کے تکنیکوں کا اپیوگ تتھا کشیتر اور انترش سایو کو مضبوط کرنا ہے پردرشنی کے دوران انترش منچ اور فورم کے آیوجن کیے جائیں گے جن میں آرتھک اور نویش سایو کے افسر پر چرچا ہوگی ایسا کارکرم کے تحت سوخت کشیتر کے پرموکھ اور تاجکستان میں چین کے راجدوت کے بیچ بیٹھک ہوئے جس میں دونوں دیشوں کے بیچ آرتھک اور نویش سایو کو اور وستار دینے پر وچار ومرش کیا گیا تاجیک راشتر سنگرهالا که نیدشک زفاشوی برویم زودانه منگولیا که راشتر سنگرهالا که نیدشک چولون سمیمپال دوتوف که ساده ملاقات که دوران دونو دشو که بیج سنگرهال که کشیتر می سایوگ مزبود اور ویستارید کنیسه سنباندید مدو پر چرچکه. یه بیتاگی اروشه که پرتامند راشتر سنگرهالا منچ که دوران منگولیا می آیوجید که گایده. دونو پاکشونه تیاسی کورسانس که تک ورسات که سنرکشن اور پرستوتی سنیوکت پردرشانیه

प्रेषितों, आप अभी हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको इस कार्यक्रम में उस्तोदा शरीफ जोरायव तजिकिस्तान के जेवन गया के समृद्धि के बारे में बताना चाहता हूँ। इस कार्यक्रम में हम तजिक संगीत कला के महान प्रतिनिधियों में से एक उस्ताद आका शरीफ जोरायव के जीवन और उनके रचनात्मक गतिविधियों पर नजर डालते हैं। हमारे साथ जुड़े रहे और ऐसे यादगार कार्यक्रम का आनंद ले। उस्तोदा का शरीफ जोरायव का जन्म दरवोज के कलाई खोम जिलों में लिचाक गांव में वर्ष 1896 में हुआ था। वे बचपन में ही अनंत हो गए थे और 20 वर्षों से अधिक समय तक दरवोज के स्थानीय अधिकारियों की सेवा में रहे। जीवन का कठिन परिस्थितियों के बावजूद गायन और वाद्यंत्र बजाने के उनके जन्मजात प्रतिभा बचपन से ही दिखाई देने लगे थे। तजिकिस्तान में सोवियत शासन के स्थापना के बाद आका शरीफ जोरायव को अपनी कला को जनता के सामने प्रस्तुत करने का अवसर मिला। अपनी मुद्दार आवाज ऊंचा चकोटे की गायकी और लोक तथा शास्त्र गीतों की उत्कृष्ट प्रस्तुति के कारण वे तजिक जनता के सबसे लोकप्रिय गायकों में से एक बन गए। उनके गीत जिनमें चोरजार्ब, शहीमान, गुलजोरम और अन्य रचनाएं शामिल है, लोगों के बीच अत्यंत लोकप्रिय हुए है। उस्तोदा शरीफ जोरायव ने तजिक संगीत कला के विकास और प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया तथा आने वाले पीढ़ियों के कलाकारों के लिए एक सच्चे कलात्मक परंपरा के विरासत छोड़े। उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के सम्मान में उन्हें तजिकिस्तान के जन कलाकार के मनाद उपाधि प्रदान की गई। चोरजार्ब उस्ताद की अद्वितीय उत्कृष्ट कृतियों में से एक मनी जाती है, जो आज बेहद श्रेताओं को मंत्रमुग्ध करती है और तजिक संगीत कला का श्रेष्ठ उदाहरण समझे जाती है। उनके गीत तजिकिस्तान के सांस्कृतिक सवारन यो के अमूल्य धरोहर है और राष्ट्रीय संगीत के खजाने में एक विशेष स्थान रखते हैं। प्रेषितों, अब हम आपके लिए उस्ताद आका शरीफ जोरायव के प्रसिद्ध गीतों में से एक गुलजोरम प्रस्तुत कर रहे हैं। इस मुधार और दिल को छोड़ लेने वाले रचना का आनंद ले और हमारे रेडियो के साथ जुड़े रहे हैं। हमारे रोचक और यादगार कार्यक्रम अभी जारी है।

प्रेषित हो, आप अभी हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको इस कार्यक्रम में उस्ताद शरीफ जोरायव ताजिकिस्तान के जीवन गया के समृद्धि के बारे में बताना चाहता हूँ। इस कार्यक्रम में हम ताजिक संगीत कला के महान प्रतिनिधियों में से एक उस्ताद शरीफ जोरायव के जीवन और उनके रचनात्मक गतिविधियों पर नजर डालते हैं। हमारे साथ जुड़े रहे और इस यादगार कार्यक्रम का आनंद ले। उस्ताद शरीफ जोरायव का जन्म दरवोस के कलाई खोम जिलो में लिचाका गांव में वर्ष 1896 में हुआ था। वे बचपन में ही अनंत हो गए थे और 20 वर्षों से अधिक समय तक दरवोस के स्थानीय अधिकारियों की सेवा में रहे। जीवन का कठिन परिस्थितियों के बावजूद गायन और वाद्यंत्र बजाने के उनके जन्मजात प्रतिभा बचपन से ही दिखाई देने लगे थे। ताजिकिस्तान में सोवियत शासन के स्थापना के बाद शरीफ जोरायव को अपनी कला को जनता के सामने प्रस्तुत करने का अवसर मिला। अपनी मुधार आवाज, ऊंचा चकोटे के गायकी और लोक तथा शास्त्र गीतों की उत्कृष्ट प्रस्तुति के कारण वे ताजिक जनता के सबसे लोकप्रिय गायकों में से एक बन गए। उनके गीत जिनमें चोरजार्ब, शहीमान, गुलजोरम और अन्य रचनाएं शामिल है, लोगों के बीच अत्यंत लोकप्रिय हुए हैं। उस्ताद शरीफ जोरायव ने ताजिक संगीत कला के विकास और प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया तथा आने वाले पीढ़ियों के कलाकारों के लिए एक सच्चे कलात्मक परंपरा के विरासत छोड़े। उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के सम्मान में उन्हें ताजिकिस्तान के जन कलाकार के मनाद उपाधि प्रदान की गई। चोरजार्ब उस्ताद की अद्वितीय उत्कृष्ट कृतियों में से एक मनी जाती है, जो आज बेहद श्रेताओं को मंत्रमुग्ध करती है और ताजिक संगीत कला का श्रेष्ठ उदाहरण समझे जाती है। उनके गीत ताजिकिस्तान के सांस्कृतिक सवारण युग के अमूल्य धरोहर है और राष्ट्रीय संगीत के खजाने में एक विशेष स्थान रखते हैं। प्रेषित हो, अब हम आपके लिए उस्ताद शरीफ जोरायव के प्रसिद्ध गीतों में से एक गुलजोरम प्रस्तुत कर रहे हैं। इस मुधार और दिल को छोड़ लेने वाले रचना का आनंद ले और हमारे रेडियो के साथ जुड़े रहे हैं। हमारे रोचक और यादगार कार्यक्रम अभी जारी है।